अपनी पूजा आप कछु न होवत पाई, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई। कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण दान प्रभ तिन्ही पाया। बिलावल महला पंजवा। मात गर्भ मह हाथ दे राखिया, हर रस छोड़ बिखिया फल चाखिया। भज गोबिंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संघारे मूड़े। तब तन बिनस जाए बेहाल, रहाओ तन मन तन अपना कर थापिया। करन हारिक निमख न जापिया, महा मोह अंधकूप परिया। पार ब्रह्माया पटल बिसरिया, वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया। संत संग नानक प्रभ पाया, बिलावल महला पंजवा। मात पिता सुत बंदप पाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। सुख सहज आनंद कणे, गुरपूरा पूरी जाकी बाणी। अनक गुणा जाके जाहे ना गणे, रहाओ सगल सरंजाम करे प्रभ आपे। तय मनोरथ सो प्रभ जापे, अर्थ धर्म काम मोख का दाता। पूरी पई सिमर सिमर विधाता, साध संग नानक रंग माणिया। कर आया पूरे गुर आणिया, बिलावल महला पंजवा। सर्ब निदान पूरन गुरदेव, रहाओ हर हर नाम जपत नर जीवे। मर खुआर साकत नर थीवे, राम नाम होआ रखवारा। चख मारो साकत बेचारा, निंदा कर कर पचहे कनेरे। मृतक फास गले सिर पैरे, कहो नानक जप है जन रा नाम। ताके निकट न आवे जाम राग, बिलावल महला पंजवा। घर चौथा दुप दे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। कवन संजोग मिलो प्रभ अपने, बल पाल निमख सदा हर जपने। चरण कमल प्रभ के नित त्यावो, कवन सो मत जित प्रीतम पावो। रहाओ ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, हर नानक बिसर ना काहू बेरे। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल प्रभ हृदय त्याए, रोग गए सगले सुख पाए। गुर दुख काटिया दीनो दान, सफल जन्म जीवन परवान। रहाओ अकथ कथा अमृत प्रभ बानी, कहो नानक जप जीवै ज्ञानी। बिलावल महला पंजवा। सांत पाई गुर सत गुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। रहाओ ताप पाप संताप बिनासे, हर सिमरत किल बिख सब नासे। आनंद करो मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पैज सवारी। बिलावल महला पंजवा। ममता मोहत्रो मद माता, बंधन बाध्या अत बिकराल। दिन दिन छिजत बिकार करत, औद फाही फाथा जम कै काल। तेरी सरण प्रभ दीन दयाला, महा बिखम सागर अत पारी। उधर हो साधु संगर वाला, रहाओ प्रभ सुख दाते समरथ स्वामी। जियो पिंड सब तुमरा माल, प्रम के बंधन काटो परमेसर। नानक प्रभ सदा कृपाल, बिलावल महला पंजवा। सगल आनंद किया परमेसर, अपना बिरद समारिया। साध जना होए कृपाला, बिगसे सा परवारिया। कारज सत गुर आप सवारिया, वड्डी आरजा हर गोबिंद की। सुख मंगल कल्याण विचारिया, रहाओ वाण तृण त्रिभवन हरिया। होए सगले जी साध हरिया, मन इच्छे नानक फल पाए। पूरन इच्छ पुजारिया, बिलावल महला पंजवा। जिस ऊपर होवत दयाल, हर सिमरत काटे सो काल। रहाओ साध संग पजिए गोपाल, गुण गावत टूटे जम जाल। आपे सतगुर आपे प्रतिपाल, नानक जाचे सादरवाल। बिलावल महला पंजवा। मन मह सिंचो हर हर नाम, अनदिन कीर्तन हर गुण गाम। ऐसी प्रीत करहो मन मेरे, आठ पहर प्रभ जानहो नेरे। रहाओ कहो नानक जाके निर्मल भाग, हर चरनीता का मन लाग। बिलावल महला पंजवा। रोग गया प्रभ आप गवाया, नींद पई सुख सहज घर आया। रहाओ राज राज भोजन खाव हो मेरे भाई, अमृत नाम रिद माहे ते आई। नानक गुरपूरे सरनाई, जिन अपने नाम की पैज रखाई। बिलावल महला पंजवा।
ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਦੀਨੇ ਅਸਥਿਰ ਘਰ ਬਾਰ, ਜੋ ਜੋ ਰਹਾਉ ਜੋ ਜੋ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਇਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾ ਕੀ ਸਰਨਾਈ, ਜਾ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਖੰਡ ਅਪਾਰ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤਾਪ ਸੰਤਾਪ ਸਗਲੇ ਗਏ ਬਿਨਸੇ ਤੇ ਰੋਗ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੂੰ ਬਖਸਿਆ ਸੰਤਨ ਰਸ ਭੋਗ। ਰਹਾਉ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਤੇਰੀ ਮੰਡਲੀ, ਤੇਰਾ ਤਨ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਆਰੋਗ। ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਨਿਤ ਰਾਮ ਕੇ ਇਹ ਅਫਗਦ ਜੋਗ, ਆਏ ਬਸੋ ਘਰ ਦੇਸ ਮਹਿ ਇਹ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭੈ ਲਹਿ ਗਏ ਬਿਯੋਗ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਾਹੂ ਸੰਗ ਨਾ ਚੱਲ ਹੀ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ, ਊਠ ਸਦਾਰੇ ਛਤਰਪਤ ਸੰਤਨ ਕੈ ਖਿਆਲ। ਰਹਾਓ ਅਹਮਬਦ ਕੋ ਬਿਨਸਨਾ ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਢਾਲ, ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਜਨ ਮਹਿਮਰੇ ਬਿਖਿਆ ਬਿਕਰਾਲ। ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਨਿਤ ਜਪਹਿ ਗੋਪਾਲ।

सदा सहाई संग प्रभ अमृत गुण चीन रहाओ। जय जयकार जगतर महलो चह सब जिया, सो प्रसन्न पै गुरुदेव प्रभ कछ बिघ्न थिया। जाका अंग दयाल प्रभ ताके सब दास, सदा सदा वड़ियाइया नानक गुर पास। राग बिलावल महला पंजवा, कर पंजवा चौप दे इक ओंकार सतगुर प्रसाद। मिरत मंडल जग साजिया ज्यों काल बालू घर बार, बिन सतबार न लागई ज्यों कागद बूंदार। सुन मेरी मनसा मने माहे सत देख विचार, सिद्ध साधक गिरही जोगी तज गए घर बार। रहाओ जैसा सुपना रहन का तैसा संसार, दिम दृष्ट मान सा बिनसी है क्या लागे गवार। कहां सुपाई मीत है देख नैन पसार, इक चाल एक चाल सह सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुर सेविया से अस्थिर हर द्वार, जन नानक हर का दास है।

अपनी शरण प्रभ मोहे कृपा तारे सेवा कछु न जानो नीच मूर्खारे मान करो तुद ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे हम अपराधी सद पू

मेरे तो हसे सिर ऊपरे पशुआ नहीं बुझे बाद साध अहंकार में मरना नहीं सूझे सतगुर सेव हो अपना काहे फिरो अपागे देख कुसुम्बा रंगुला काहे फूल लागे रहाओ कर कर पाप दर्ब किया वर्तन के ताई माटी स्यो माटी रली नागा उठ जाई जाके किए शर्म करे ते बैर विरोधी अंतकाल पद जाहेंगे काहे जलो करो दी दास रेण सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की सरना बिलावल महला पंजवा पिंगल पर्वत पार परे खल चक्र बकीता अंदले त्र पवन सूजिया गुर भेट पुनीता मेहमा साधु संग की सुनो मेरे मीता मैल खोई कोट अगहरे निर्मल पहचीता रहाओ ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता जो जो की नो अपनो तिस अपैदान दीता सिंह बिलाई हो गयो तृण मेर दिखीता शर्म करते आदम आडको ते गनीत नीता कावन बड़ाई कह सको बेअंत गुनीता हा कर कृपा मोहे नाम देहो नानक दर सरीता बिलावल महला पांजवा अहम बुद्ध प्रबाद नीत लोभ रसना साध लपट कप गृह बेदया मिथ्या बिख्याद ऐसी पेखी नेत्र मह पूरे गुर प्रसाद राज मिलक तन जोवना नामे बिन बाद रहाओ रूप तूप सोगंध ताका पर भोगाद मिलत संग पापिष्ट तन होए दुर्गाद फिरत फिरत मानुख पया खिन पंगन देहाद एह अवसर ते चूकिया बहुत

तारी रहाओ अंत छड़ाई मोहे ते इतनी दृढ़तारी सगल रे नेह मन पया बिनसी आप तारी निंद चिंद परा पर दुख ना एह खिन मह जारी दया मया कर निकट पेख नाही दूरारी तन मन शीतल पहे अब मुक्त संसारी हीत चीत सब प्राण तहन।

करण कारण समरथ प्रव हर अगम अपार। बिलावल महला पांजवा सोई मलीन दीन हीन जिन प्रभ बिसराना, करने हार न बुझ आप गने बिगाना। दुख तते जद बिसरै सुख प्रभ चिताए, संतन के आनंद एहो नित हर गुण गाय रहाओ। ऊचे ते नीचा करे नीच खन मह थापे, कीमत कही न जाइए ठाकर परतापे।

अगन सागर ते काढ़िया प्रभ जलन बुझाई अमृत नाम जल संचया गुर पै सहाई जन मरण दुख काटिया सुख का थान पाया काटी सिलक मोह प्रमोह की अपने प्रभ पाया मत जान मत कोई जानो अवर कछ सब प्रभ के हाथ सर्ब सुख नानक पाए संग सांतन साथ बिलावल महला पंजवा बंधन काटे आप प्रभ बंधन काटे आप प्रभ होआ कृपाल दीन दयाल प्रपार ब्रह्म

तरे कुल कुटुंब उधारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा पई दास अपना कीनर। बिलावल महला पांचवा। हर भगतां का आसरा अन नाही ठाओ तान दीवान परवार धन प्रभ तेरा नाओ कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए निंदक निंदक का कर पचे जमकाल ग्रसिए रहाओ संता एक त्यावना दूसर को नाहे एक सागे बेनती रब आसा सरब थाए कथा परा तुन यों सुनी भगतन की बाणी सगल दुष्ट खंड खंड किए जन लिए मानी सत बचन नानक कहे पारगट सब माहे प्रभ के सेवक शरण प्रभ तिन को पहो नाहे। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे सो प्रभु जाके कल हाथ अवर कर्म नहीं छूटी है राखो हर हाथ तो शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए संसार ते राखे गोपाल रहाओ आशा परम विकार मोह इन महलो भाना झूठ समग्री मन वसी पार ब्रह्म ना जाना परम ज्योत पूर्ण पुरख सब जीत मारे ज्यो तू राखे त्यों रहा प्रभ अगम अपारे करण कारण समर्थ प्रभ देह अपना नाओ नानक तरिय साध संग हर हर गुण गाओ। बिलावल महला पंजवा। कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी

छुटे जो ऊपर लादा रहाओ जापता पसंजम तुम खंडे जम के दुख डांड सिमर नाही जोन दुख निल जय पहांड हर संग सहाय महामीत तिस्यों तेरा भेद बीधा पंज बटवारी उपजो महाखेद नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस की ना तन तन सर्व से अपना प्रभ जन को दीना बिलावल महला पंजवा उद्यम करता आनंद पिया सिमरत सुखसार जप जप नाम गोबिंद का पूर्ण विचार चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा पार ब्रह्म राते मुख अमृत पीवा रहाओ जी जंत सब सुख बसे सब के मन लोच पर उपकार नित चितवते नाही कछ पोच तन सुथान बसंत तन जह जपिए नाम कथा कीर्तन हर अत कहना सुख सहज विश्राम मन ते कदे ना विसरया नाथ को नाथ नानक प्रभ शरणागति जाके सब हाथ बिलावल महला पंजवा जिन तू बंद कर छोड़या फुन सुख मह पाया सदा सिमर चरणार बिंद शीतल होताया जीवते अथवा मोया किछ काम न आवे जिन एह रचन रचाया को तिस स्यों रंग लावे रहाओ रे प्राणी उसन सीत करता करे काम काम ते काडे कीरी ते हस्ती करे टूटा ले गाडे अंडज जेरज सेतज उत्पुजा प्रभ की एह किरत किरत कमावन सर्ब फल रवि हर निरत हम ते कछु न होवना सरण प्रभ साध मोह मगन कूप अंत ते नानक गुर काड बिलावल महला पंजवा खोजत खोजत मैं फिरा खोजो बन थान अछल छेद भेद प्रभ ऐसे भगवान।

रहाओ वर्णाश्रमन शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास रूप न रेख न रंग रूप न रेख न पंच तत् तन ठाकर अविनाश ओहो स्वरूप संतन कहे बिरले जोगीसर कर कृपा जा को मिल।

अवतरा काल पाय कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोग सुवारा नमस्कार।

हरो साच नाम अंधार मेरा जन भुखा साहब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसया जन इच्छा साहब पुजाइया।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे, तिस साहिब की टेक नानक मणे माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पहर।

तैसे पावनी भगत पाए, पावनी भगत पाए, काट काट पूर्ण ब्रह्म पहचानिए। भई भावना दे नाल कटा कटा विच पूर्ण ब्रह्म नूं ही वेख। आखो सतनाम श्री। एक एक बचन ध्यान दे, कई प्रमाण मिल गए ने। अगां तुरीए जे आपां इत्थे समां लगाउणा तां फिर लंघ जाणा है। मेरे गरीब निवास सच्चे पातशाह जी कृपा करदे ने, ए मन मत जाण, मता समझ, हर दूर है, हरी परमात्मा ते इत्थों दूर है नहीं। सदा वेख हदूर, सदा नूं हाजर वेख। जी हाजर है, गुरुदेव महाराज कहिंदे बिल्कुल। अगले बोल स्पष्ट हो जाने ने।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु।

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु

संग मोहे उदारो सुखमणि सोखे अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम रहाओ।

संत प्रताप दुर्त सबनस है, संत का संगवट भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुल कशावर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए सलो, बहु शास्त्र बहु सेमृति पेखे सार बट डोल, पूज सनाही हर हरे नानक राम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान घट शास्त्र सिमरत वख्यान, योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मध्य फिरिया, अनक प्रकार किए बहु जतना पुन दान हमें बहु रतना, शरीर गटाए हमें कर राति वर्त नेम करे बहु भांति, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौखंड पृथ्वी फिराचर जीवै महा उदास तिपिसर थीवै, अगन माय होमत प्राण कनक सब है भर भूम दान, न्योली गर्म करै बवासन जैन मार्ग संयमत साधन।

पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तूह उस गवन करतार करुणा में दीन बेनती कर नानक तुमरी कृपा तर संग सहाय सो आवे ना चीत जो बैराई ता स्यो प्रीत बलुआ के ग्रह पीतर बसै अंध केल माया रगरसै दृढ़ माने मने प्रतीत काल न आवे मूड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महलुभ द्रोह।

कृपा में सुकने रे कोई ना जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समागरी तुमरा सुतरतारी तुम ते हुए सु आज्ञाकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास सदा गुरबानी सलोक।

आए अष्टपदी दस वस्तुले पाछे पावे एक वस्त कान मिखोड़ गवावे एक पीना दे दस भी हरले तो मुड़ा कहो कहा करी जिस ठाकुर

नानक तिन पाया आगंत शापनी दे रास खात पीत बरते अनद उलास अपनी अमान कछ बौर शाले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवै मौरस का विश्वास न होवै जिसकी बस आगे राख है प्रभ की आज्ञा मन मत है उसते चौगुन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सरबर होवत जान अनेत बिरकी छाया सो रंग लावै ओ बिन स्यो मन पछतावै जो दिसै सो चालन हार लपट रहो ते अंध अंधार बटाऊ से जो लावे ने ताकू हाथ न आवे के मन हर के नाम की बरी सुखदाई कर कृपा नानका बलह लाई मिथ्या तन धन गुटम सबाया मिथ्या हमें ममता माया मिथ्या राज ओबन धन मार मिथ्या काम क्रोध बिकरार मिथ्या रथ हस्ती आसो बस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता मिथ्या ध्रुवमो अभिमान मिथ्या आप सुपर कर तुग महान अस्तर भगत साध की सरन नानक जब जब जीव हर के चरण मिथ्या सर्वन पर निंदा सुनह मिथ्यास पर दर्भ को हिरे मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिरुपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बिकार को तावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन नहीं बार बकारा मिथ्या बास लेत बेकारा मिन बुझे मिथ्या सब सबल

अष्टपदी जय प्रसाद शति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जय प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मनंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरत सरसना जय प्रसाद रंग रास भोग नानक सदा त्याए ध्यान जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्याग तबर लुभावे जय प्रसाद सुख सहज सवई जय मन आठ पैर ताका जस गावी जय जय प्रसाद तू सब को मान है मुख दाको जस रसन मखाना है।

ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी सलोक और धारे जवंतर नाम सर मैं पेख भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक परस सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पार्थ रूपना पेख नेत्र साध की टहल संसंगेत

ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सब कहावै। तैसा अर्घ तैसा सोम सदानंत नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी सुबाटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत नानक उपर कहिए, जीवन मुक्त पार ब्रह्म गे सगले ठाओ, जित घर राखे तैसा तिन नाओ, आपे करन करामन जोग, प्रभावे सुबन होग, पसरिया पे अंत रंग लखे ना जाहे, पार ब्रह्म के रंग जैसी माते तैसा प्रगा, पार ब्रह्म करता विनाश।

अनेक प्रकार अष्टपदी, कई गोट होए पुजारी, कई गोट आचार व्यवहारी, कई गोट भय तीर्थवासी, कई गोट बन भ्रमे उदासी, कई गोट वेद के स्रोते, कई गोट तपीसर होते, कई गोट आत्म ध्यान धारे, कई गोट कब का विचारे, कई गोट नवतन नाम ध्यावे, नान करते गंध न पावे, कई गोट भय अभिमानी, कई गोट अंध अज्ञानी, कई गोट किरपन कठोर, कई गोट अभिगात्म ने कोर, कई गोट पर धर्म को हिरे, कई गोट पर दुख ना कर है, कई गोट माया सर्व माहे, कई गोट प्रदेश परमाहे, जित जित लाभो तित तित लगना, नान करते की जाने करता रचना, कई गोट सिद्ध जति जोगी, कई गोट राजे रस भोगी, कई गोट पंखी सर्प उपाय, कई गोट पाथर बिरखन बजाए, कई गोट पवन पानी व संतर, कई गोट देश भूमंडल, कई गोट ससियर सूर नखेत्र, कई गोट देव दानव इंद्र शेर शत्र, सगल समग्री अपने सूत धारे, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है, कई गोट राजस तामस सात, कई गोट वेद पुराण सिमरथर शास्त्र, कई गोट किए रतन समंद, कई गोट नाना प्रकार जंत, कई गोट किए चिर जीवे, कई गोट गिरी मेहर स्वर्ण थीवे, कई गोट जख कनर पिसाच, कई गोट भूत फिरे सुगन मृगाच, सबते नेरा सबूते दूर, नानका बलिप त्रया भरपूर, कई गोट पाताल के वासी, कई गोट नरक सुर्ग निवासी, कई गोट जन्मे जीवे मरे, कई गोट बहु जूनी फिरे, कई गोट बैठत ही खाए, कई गोट घाले थक पाहे, कई गोट किए तरबंध, कई गोट मै माया मैं चिंत, जय जय भाणा तै तै राखे, नानक सब कुछ प्रभ के हाथे, कई गोट भय बैरागी, राम नाम संगतन लिवलागी, कई गोट प्रभु को खोजंते, आत्म में पार ब्रह्म लहंते, कई गोट दर्शन प्रप्यास, तिनको मिले प्रभ विनाश, कई गोट मांगे सात संग, पार ब्रह्म दिन लागा रंग, जिनको आप सुप्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई गोट खाणी अरखंड, कई गोट आकाश ब्रह्मांड, कई गोट हुए अवतार, कई जुगत किन्नो विस्तार, कई बार पसरियो पासार, सदा सदा एक एक अंकार, कई गोट किन्ने बापान, प्रभते ब्रह्माए समात, ताकांतरा जाने कोए, आपे आप प्रभ सोए, कई गोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास, कई गोट तत् के बेते, स्यादा सदा निहारे एको नेत्रे, कई गोट नाम रस पीमे, अमर पहे सा सदी जीवे, कई गोट नाम गुण गावे, आत्म रस सुख सह समावे, अपने जन को सा सा समारे,

नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंदर राज विमान सो नरक पाती अवसमान जो जाने में जो बलवंत सो उद्विष्टा का जंत आपसको कर्मंत का आवे जन्म मरा बहु जौन परमावे तन भूमगा जो करे गुमान

सबके साथ आप की नुआ बन विस्तार सब कश सकाओ करने हार उसते भिन्न कहाऊ किशु थान धरंदर एक सोए अपने चलता आप करने हार गौतो कर रंग आपार मन में आप मन अपने माहे नान कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरप्रसाद करे मखियानी सच सच सत सब कीना कोट मदे कने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप असुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कटकड़ सुनी सरा

सो सेवक को कस्ते डराया, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोद सिजिया, गुरप्रसाद तस बुझिया, जब देखो तब सब कुछ मूल, नानक सो सुखम सोई स्थूल, नह के जन्मे नह किश मराय, आपन चलत आप ही कराय, आपन जामन दृष्ट आन दृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट, आपे आप सकल में आप, अनक जुगत रज थाप उथाप, अविनाशी नाई किश खंड, धारण धार्यो ब्रह्मंड, अलख अपे पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप, जिन प्रभु जाता सो शोभा बंत, सगल संसार उधरे तन मंत, प्रभु के सेवक सगल उदारन, प्रभु के सेवक दूह बेसारन, आपे मेल लय कृपाल, गुर का शब्द जपे निहाल, उनकी सेवा सोई लागे, जिसनों कृपा करे बट भागे,

कहता हरे खंड ब्रह्मांड, नाम कहता हरे सिमृत वेद पुराण, नाम कहता हरे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम कहता हरे आकाश पाताल, नाम कहता हरे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संगद्रे सुन श्रवन, कर कृपा सपरे नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए, रूप सत जा का सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की बाणी, सतपुरख समाहे समाणी, सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत, सत करड़ी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब पली, सत नाम

निर्मल होए तुम्हार रोचित, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के गल बिख जाहे। आप जब अबरा नाम जपावो, संत कै द्रैत गत पावो, सार पु सतर को नाऊ सह सुभाए, नान गुन गाओ गुण गाव त्रिवत्र समैल, बिन जाय हो मैं बिख फैल, होए अचंद बसे सुख नाल, सास ग्रासर नाम समाल, छाड़ सियानम सगली मना, सा संग पावे सच धनार, पूंजी संज करो व्यवहार, इहां सुख दर गय जयकार, सर्व निरंतर एको देखो नानक जाके बस सकलेख, एको जाप एको साल आहे, एक सिमर एको मन आहे, एकस के गुण गाव अनंत, मंथन जाप एक भगवंत, एको एक एक हरा, पूर्ण पूर्ण रहो प्रभ्या।

प्रजापष्टपदी जब कार्य काशना दृष्टिता पापन तब कहते होता जब तारियापन सुन्न समात बैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चिहन्ना जाप तब हरक सहरक सौ कह किसे व्यापत जब यापन आप आपार ब्रह्मत मोह का सोभत ब्रह्म आपन खेला वर्तीजा नान करने हार न दूजा जब होवत ब्रह्म केवल तनी तब बंद मुगत कहो किसको गनी जब एक हर अगम अपार तब नर्क सुर कहो कौन अवतार जब निर्गुण ब्रह्म सह सुभाए तब शिव शकत कहो कित ठाए जब आप अपनी ज्योत धराय तब कमन डर कमन कत डराय आपन जल ताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तय जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप आपिय चर्जा नानक आपन रूप आपिय प्रजा जय निर्मल पुरख पुरख पातोता तय बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्बान तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीत है छल छिद्र लगत गौ कीस जय जो सुरभि जो संग समावत किसे भूकम द्रवताव करण करावन करने हार नानक करते का नाहे सुमार जब अपनी शोभा आपन संग मनाए तब गमन माए बाप मित सुत पाई जय सर्व कलापे परवीन तक भेद गतेव कहा कवचीन जब अपने आप रुतारे तो सगन अब सगन कहा विचार है जयनु जब नाब नेरा तय कौन ठाकुर कौन गये चेरा विषम न विषम रहे विस्माद नानक अपनी गत जानू आप जा छल अशेद अपे समाया उहा किसे ब्याप दमाया आप इसको बाप आदेश ते गुण का नाही प्रवेश जा एक एक एक भगवंता दौन अजंत के सलाह गे

को जाए बरे राखना हर दयाए निर्भाव जपे सगल भाव मिटे प्रभु कृपा ते प्राणी छुटाए जिस पर राखे तज नाही दुख नाम जपत मनो सुख चिंता जाय मिटे अहंकार तजन को कोई ना पहुचन हार सिर पर ठाडा गुरसूरा नानक तागे कारज पूरा मत पूरी अमृत जागी दृष्ट दर्शन पेख उदर श्रेष्ठ चरण कमल जागे अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक प्रवान अंदर जामी पुरख प्रधान जिसमन

तब जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम शरान चार पदार्थ कमल प्रकाश सबके मध सकल देवदास सुंदर चतुर तद का बेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने तो निदान जप मन कोय सब जुग में तागीगत होए गुण गोविंद नाम तुरबाणी सिमरत शास्त्र भेद बखाणी सकल मतान केवल हर नाम गोविंद भगत गय मन विश्राम कोट पराध सा संग मिटाय संत कृपाते जमते छुटाए जाके मस्तक करम रबाए साध सर नानक दे आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत तिजन आवे हर प्रभचीत जन्म मरण ताका दुख निवार दुलाभ दे तत्काल उदार निर्मल

एक बार जो तुद पहावे साई परिकार तुम सदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तापताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सु

कार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लोव असंख कह सिर पार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुन गा अखरी लिखण बोलण बान अखरा सिर संजोग बखान जिन एह लिखे ते सिर नाहे जे फरमाए तिव तिव पाहे।

कोई जा करता सिरठी को साजे आपे जाने सोई किव करे आखा केव साला ही क्यों वरनी किव जाना नानक आखण सबको आखे एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का होवे नानक जे को आपव जाने अगे गया ना सो है पाताल पाताल लख आगास अंगास ओढ़ कोढ़ कपाल थके वेद कहन कवात सैस अठारह कहन कते बास लू एक तात।

लख लख गेड़ा आखिया एक नाम जगदीश एत राहे पद पवड़िया चढ़िया होए अकीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आही रीस नानक नदरी पाई कूड़ी कूड़ा ठीस आखन जोर च पैन जोर जोर न मंगन दे न जोर

है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, परम है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, प्रजंग प्रिया छंद, नमो सर्वमान्य समाधि निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेहवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पहुणे, अनंगी अनाथे निरसंगी प्रमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्र, नमो पान पाने, नमो चंद्र

के विभूत करने के राजन प्रभ है के धर्मं तुझा है के अशोक बरने के सर्वा अपहरने

है, केसर पत्र मान्य है, केसर पत्र धान्य है, केसर पत्र गावन है, केसर पत्र पाहुण है, केसर पत्र देश है, केसर पत्र भेस है,

सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र काल है, के सर्वत्र पाल है, के सर्वत्र हंता, के सर्वत्र गंता, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र काज है, के सर्वत्र साज है, के सर्वत्र सुख है, के सर्वत्र पोख है, के सर्वत्र तरान है, के सर्वत्र प्राण है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र मान्य है, सदैव प्रधान्य है,

राज है निर्मुक्त स्वरूप है तरमुक्त विभुत है परभुक्त प्रभा है सुजुगत सुदा है सदैव स्वरूप है भेदी अनुरूप है समाहतोपराज है सदा सर्वसाज है समा

शूत है के नरकं प्रनास है पृथ्वी और प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विपुक्त स्वरूप है पर जुगते अनूप है।

तो विभूत है, के अमितो पसा है, के आतुम प्रभा है, के अचलंग नाग है, के अमितो पाग है, मद पर शांत व प्रसाद मन मान प्रणाम गुण गान मुदाम हर भर गांज हर नर पर पांज

परमेश्वर है, काल कारण है, सर्व उबारण है, त्रिहित के धरण है, जग के करण है, मन मान्य है, जग ध्यान है,

अरगंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कार्य है, हरता हार है।

में त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी एका में एक अशरी छंद अजय अलय अपहय अभय अपहु अजु अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख

करेंगे, कोड़ स्नान के जात के दान अनेक सुअम्बर साज भरेंगे, ब्रह्म महेश्वर विष्णु सती पत अंत फास भरेंगे।

लड़कायो काहू लख्यो हर वाची दसम काहू पिछाको शीश निवायो को बतान कौ पूजित है पास को मृतान कौ पूजन तहायो कूर क्रिया उर्जे सब ही जग सी भगवान को भेद न पायो।

साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कर कर के पर की जाने जब उदकर्ष करा कृतार पर जा तरत तब देह अपार।

तिन हसमानी पीव होय अमृत सदा रहो हरंग जपे वसारंग पाणी कहे नानक सदा गावे सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सौदे कच्चे कच्ची आख खाणी हर हर नित करहे रसना कहया कछु न जानी।

तुम है ज्योत रखी ता तू जग में आया, हर ज्योत रखी तुद विच ता तू जग में आया। हर आपे माता आपे पिता जिने जियो उपाय जगत दिखाया गुर।

मन त्रेतन करे अच्छा तो सच ता पर जानिए जा सच तरे प्या नाव सुन मन रहसी है ता

तरन गगन नव खंड मह जोत सब रूपी रहे हो पार पन मथरा कछ भेद नहीं गुरु अर्जुन प्रताख्या हर सो कहो टल गुर सेवी अहनस सहज सुपाए दर्शन परसियाए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सलोक दया करन दुख हरन चरण नाम कीर्तन है दयाल पुरख भगवान है।

है, दयाल पुरख भगवान है, नानक लिपत न माया, पहे बलंदड़ी बुझ गई, रखंदड़ो प्रभ आप, जिनो पाई मेदनी, नानक सो प्रभ जाप। पावड़ी जा प्रभ पहे दयाल न व्यापे माया, कोट अघा गए नास, हर एक त्याया, निर्मल पहे शरीर जन तूरी नाहया,

सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सहवान गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सहवान गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सहवान गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजनी सहवान गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजनी सहवान गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी भी सच वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु।

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਾਣੀ ਆਪ। ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਾਣੀ ਆਪ। ਕੰਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੋਮਾ ਬਲ, ਉਸਮ ਬਸੰਤ ਗਣਤ ਨਾ ਆਪ। ਕੰਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੋਮ ਬਲ ਬਲ, ਉਸਮ ਬਸੰਤ ਗਣਤ ਨਾ ਆਪ। ਰਬ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ, ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਰਬ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ, ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ, ਕਬ ਜਨ ਭਲ ਉਹਨੇ ਜੋ ਗਾਵੇ। ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ, ਕਬ ਜਨ ਭਲ ਉਹਨੇ ਜੋ ਗਾਵੇ। ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਾਣੀ ਆਪ। ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਾਣੀ ਆਪ। ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ, ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ। ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਊਜਲ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਿੱਤਰ ਸਿਆਣੇ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ। ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡ। ਨੀਕੋ ਠਾਕੁਰ ਦੇਸਾ, हम पापी तुम पाप खंड नीको ठाकर दे सा रहो तुम सब साजिए साज नवाज ज्यो पिंड दे प्राण निर्गुणे आरे गुण ने कोई तुम दान देहो मेहरवाना तुम करो भला हम भलो न जान तुम सदा सदा दयाला तुम सखदाई पुरख बधाते तुम राखो अपने बाला तुम निदान अटल सुल्तान जी जन सब जाचे कहो नानक हम हे गुरुआ हवाला रख संतन के पाछे कहो नानक हम हे हवाला रख संतन के पाछे चाचरी चंद गोविंद मकंद उदार अपार हरिया करिया नाम में अकाम गोविंद मकंद उदार अपार हरिया कर नाम में अकाम ढाडी दर्प मंगना दर कदे न छोड़ मरता गोविंद संग सच भोजन जोड़ पीत लगी हर नाम सो ए हस्ती कोड़ राज मिलक खुशियां कणी चाहे मुख न मोड़ ढाडी दर्प मंगना दर कदे न छोड़ नानक मानता चाओ नित प्रभ को लो नानक मानता चाओ नित प्रभ को लो वाहे गुरु एक तू ही एक तू ही एक तू ही एक तू ही एक तू ही एक तू ही एक तू ही एक तू ही एक तू एक तू ही एक तू एक तू ही एक तू एक तू ही एक तू एक तू ही एक तू धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव साहब तू ही निरंकार तू सदा सलामत निरंकार तू ठाकुर ऊच भगवान नानकी प्राप्त बेनती अपनी भगती लाए धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव साहब तू ही निरंकार तू सदा सलामत निरंकार तू ठाकुर ऊच भगवान नानकी प्राप्त बेनती अपनी भगती ला धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज धन धन बाबा नानक सिंह जी महाराज कोट कोट प्रणाम भुल चुक माफ तेरे चरण कमला पास बहुत बहुत धनबाद नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सुदा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल सत श्री अकाल।

हम कई यत काल युग के कमी इन पंचन मेरो मन जो बिगाड़ो पल पल हरी ते अंतर पार्यो जत देखो तत दुख की राशि अजो ना पति आए निगम पै सखे गौतम नार उमापत स्वामी

कबीर दावे दाजन होत है, निरदावे रह निसंक। जो जन निरदावे रह सो गने इंद्र सो सरंक। कबीर पाल समूहा सरवर भरा, पी न सकै कोई नीर। भाग बड़े तै पायो, तू भार पर पियो कबीर। कबीर प्रभाते तारे खिसे, त्यों इहो खिसे शरीर। ए दुए अखर ना खिसे, जोगै रहो कबीर। कबीर कोठी काठ की, दै दिस लागी आग। पंडित पंडित जल मुए, मूर्ख उपरे भाग। कबीर संसा दूर कर, कागद देह बिहाए। बावन अखर सोध कै, हर चरनी चित लाए। कबीर संत न छड, संतई जो कौटक मिले संत।

दिवस चार को पेखनांत खेह की खेह। कबीर सूरज चांद चूर कबीर सूरज चांद कै उदय पई सब देह। गुर गोबिंद के बिन मिले पलट पई सब खेह। जय न पोत पै नहीं जय पोत है हर नाहे। कहो कबीर विचार कै संत सुनो मन माहे। कबीर जिन्हों किस जानिया नहीं तिन सुख नींद बिहाए। हम सो बूझा बूझना पूरी परी बलाए। कबीर मारे

निरपमाण्यो लाखमय अलख लखायो अगम गोचरगत गंभीर सदगुरु परचाय गुरु परचय परवाण राजमेरो जोग कमायो धन धन गुरु धन अपार सार सो पार परायो गुरुगम परमाण अदर जरयो सर संतोख समायो गुरु अर्जन कल चरा चस जोग निज पायो अम्यो रचना बदन बर दाते लख पार गुरु सूर सबद हमे निवार्यो पंचाहरण दलय सुन सहज निज कर सहारो हर नाम लाग जग उदरयो सदगुरु हृदय बसायो गुरु अर्जन कल चरा ते जन कह कलश दीपायो छोटे गुरु अर्जन पुरख प्रमाण पार्थ उचाले नहीं ने जा नाम निशान सदगुरु शब्द सुवार्यो पवजर सायर सेत नाम हरि का बोझता तो सदगुरु संग हेत नम लाग जग उदरियो जग तो धारण नाम सदगुरु तुटे पायो अब नाहे अवर सर काम बरंतर पूरी पड़ी ज्योतरु पर आप गुरु नानक का आयो तांते अंगद पयो तस्यो तत मिलायो अंगद कृपा तारे अमर सदगुरु थिर कियो अमरदास अमृत छतर गुरु राम दियो गुरु रामदास दर्शन परस कै मथुरा अमृत भयण मूर्त पंच परवान पुरख गुरु अर्जुन पिख्यो नयन सत रूप सत नाम सत संतोख तरियो और आद पुरख पर तक लिखियो अचर मस्तक तोर प्रगट ज्योत जगमग तेज भू मंडल छायो पारस परस परस परस गुरु गुरु काय पन मथुरा मूर्त सदा सिर चाय चित स्थान मुख रहो कालजुग जहाज अर्जुन गुरु सकल सृष्ट लाग बितरो ते जन जाचो जगत पारे जानी अत बस रहन बस जाको हित नाम सो परम अतीत परमेश्वर कै रंग रंगो बासना ते बार पै देखे धाम से परंपर पुरख स्यो प्रेम लागो बिन भगवंत रस नाही और काम स्यो मथुरा को प्रभ सर्वमय अर्जुन गुर भगत के हित पाए रहो मिल राम स्यो

चाडो एक करे मथुरा जन को प्रभु दीन दयाल संग सृष्ट निहाल करे रामदास गुरु जगतारण को गुरु अरे ज्योति अर्जुन माहे तरी जागे और न जाय महा ताम में अवतार जागर आन कियो तिनके रख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो ए पद्धते मत चुके ते नर ए पद्धते मत चुके रे मन भेद बपेद न जान बियो पर तथ हृदय गुरु अर्जुन के अर पूर्ण ब्रह्म निवास।

को अवतार बनायो, जप्यो जने अर्जन देव गुरु पर संकट जोन कर बनायो, कल समुद्र पै रूपर घट हर नाम उदारन बस संत जस हृदय, दुख दरिद्र निवारण निर्मल पे का पारदास बिन अवर न कोई, मन बच जिन जान्यो पयो तै स्वयं सरसोई। तारण गगन नव खंड मैं जोत सब रूपी रहो, पर परमथ रगत भेद नहीं, गुर अर्जुन पर तक हर अज गंग जल अटल सिख संगत जब नावे, नित पुराण बचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे, अज चवर सिर टुल्ले नाम अमृत मुख लियो, गुर अर्जुन छे सिर छतर आ परमेश्वर दियो, मेरे नानक अंगद अमर गुरु गुर रामदास हर पै गयो, हर वंश जगत दस संचर सुकवन कह श्री गुरु मयो, देपुरी में गयो आ परमेश्वर पायो, हर सिंहासन दियो श्री गुरु ते बैठायो, रस कियो सुर देव तो हे जस जय जय, जम्पे असुर गए ते भाग पाव तिन पितर कंबे, काटे सो पाव तिन नरोके गुरु रामदास जिन पायो, छत्र सिंहासुर पृथ्वी गुरु अर्जुन को दे आयो, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त जुनी सह पंगुर प्रसाद, स्वलोक बारह ते वधीक महला पहला, उतंगी प्योरी गहरी गंभीरी सतसुर सुया केव करे निमणा जाए, थणी गत जे लगा गड़बड़ी सके तौलरी, सह पिटन दे डट में मंदना गर्भ थणी, सुन मुंदे हरना किया गूड़ा बैन अपार, पहला मत संजान के ता कीजे व्यापार, दोहे दिते दूजना मित्रा को जयकार, दित दोही सज्जन मिलन लो मुंदे विचार, तन मन दी जाए सज्जना ऐसा संसार ते सोने न किते, जद चरण हर नानक जिनी कर बुझिया, तिना बिटो कुरबान जे तू तारू पान ताहू पुछतड़न कल, साहू खरे सुजान वंजा इन्नी कपरे चाड़ चखड़ो हाड़ लहरी, बैन लखे श्री सगर सेवा लाए बेड़े डूबनाए पाओ, नानी दुनिया कैसी होई सार कि मितना रहो कोई पाई, बंदी हित झुकाया दुनिया कारण दिन गवाया, है करके ओहे करेन गल्ला पिटन सिर खोएन,

कलर केरी चपड़ी कवा मल मल नाये मन तन मैला गुणी चिंज परी कंदी आए सरवर हंस न जाने काग कुपंखी संग सक सुवैसी प्रीत बुजो ज्ञानी रंग

मरे लगे सा प्रवाण जिसन लाए तिस लगे लगे ता प्रवाण परम पर कामना निकले लाया तिन सुजान पांडा तो कौन दे कच्चा सा जाता तू पंजर लाए कूड़ा पा दिया पांडा अणग राजा दे पाप से

भुजंते नरस गुण स्वरूप इकना नादन वेदना गी रस रस कस न जनंत इकना सिद्ध न बुद्ध न कलसार अखर का प्यो न लहंत नानक ते नर असर कर जेवन गुण गर्व करंत सो ब्राह्मण जो बिंदे ब्रह्म जब तब संयम कमा वे करम शेष संजो कारक धर्म बंधन तोड़े हवे मुकत सोई ब्राह्मण भोजन जोगत खत्रि सो जो कर्म का सूर पुन दान का करे शरीर खेत बचाने बीजे दान सुखत्रि दर्गा प्रवान लाभ लोभ जे कूड़ कमावे अपना किता आपे पावे तन ना तपाए तन उर्द्यम बल नट न बाल सिर्फ पैरी क्या फेड़िया अंदर प्रिस माल सब निकटे सो बसे सो बिन कट न कोय नानक ते सुहागण जिन गुरमुख प्रगट होए जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तरी गली मरी आओ तुमारग पैर तरी जय सिर दीदे कान न की दे नाल के राड़ा दोस्ती कूड़े कूड़े पाए मन न जापे मूल आप कितै चाहे ज्ञान इन का ज्ञान पूजा अंध वर्ताओ पाओ दूजा गुरबन ज्ञान तर बिनते हैं सच बिन साखी मूल न बाकी मानु कल्ले उठे चले साधना ही अबे ही गले राम चरे दल मेल वे अंतर बल अधिकार बंत्र के सेना सेवी मंथन दूध पार से तला गया दस रोल चुण मोह श्राप

चानन मग दिखाया, हमें मार एकले लागे अंतर नाम साया, गुरुमति जम जय न सक्या सचे नाय समाया, सव्या पे आप वर्षे करता जो पावे सो नाय लाया, जन नानक नाव लयता दिव्य मेरे नामे खेन मर जाया, मन अंतर हुमे रोग परम पुल हुमे साकर दुर्जना, नानक रोग गवाय मिन सदगुर साधु सजना, गुरमति हर हर बोले हर प्रेम कसाई, दिन सरात हर रति हर रंग चोले, हर जैसा पुरख न लभे सब देखिया जगत मैं टोले, गुरु सदगुरु नाम दिड़ाया मन अंतर का हु डोले, जन नानक हर का दास है गुरु सतगुरु के गुल गोले, श्लोक महला पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद, रचे से जय मुख नाम डन जनी समझाता साई, चढ़ चढ़ पौधे कच्चे बिरही जना कारण आई, तणी बिहुना पाठ बटंबर पाई से ती जाले, तुड़ी बच लुड़न दड़ी सुहा, नानक तय सह नाले, गुरु के सब द्वारा दिए नाम रंग बैराग, जीते पंज बैराइया नानक सफल मारू राग, जामू एक तन लख तो जिती पिने दर के चढ़े, ब्राह्मण बिरथा क्यों जन्म जिनकी तो सो विसरे, सोठ सोरस पीजिए कब न पीका होए, नानक राम नाम गुन गाइए, दरगा निर्मल सोए जो प्रभु रखे आप तिन कोई न मारे, अंदर नाम निदान सदा गुण सारई, एकाठे का गम तन प्रभु तारई, लगा रंग पार को न उतारई, गुरु कर गुण गाय सह सुख सारई, नानक नाम निदान हृदय उर हारे, करे सो चंगा मान दुई गणत लाए, अपनी नदर ने हाल आपे लो लाए, जन देव मति उपदेश विचों भरम जाए,

सुणाए स्व ईश्वर ब्रह्मा इंद सुणाए मुक्सला हनुमान सुणाए जोग जुगत तन भेद सुणाए सास सिमरत वेद नानक भगत सदा विकास सुणाए दो पाप का नाश सुणाए सत संतो।

भक्तनास मन के गद कही न जाए जेको कह पिछे बचताए कागद कलम न लिखना हर मन का व्याकरण विचार ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए मन सुरत होए मन बुद्ध मन सकल पवन की शुद्ध मन मचोटा न खाए मन जम के साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए मन मार्ग ठाक न पाए मन पशु प्रगट जाए मन मगन चले पंथ मन धर्म सति संबंध ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोए मन पाव मुख द्वार मन परवार साधार मन तरै तारे गुरु सिख मन नानक पावे न भिख ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावन दरगह मान पंचा सोहन दर दान पंचा का गुरु एक ध्यान जेको कह करे विचार करते कह करने नहि सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख था प्रख्या जन सूत जेको

मत निरंकार असंग जाप असंग भाव असंग पूजा असंग तपता असंग ग्रंथ मुख वेद पाठ असंग जोग मन रह उदास असंग भगत गुण ज्ञान विचार असंग सती असंग दातार असंग सूरम भगसार असंग मूल्य विलायतार कुदरत

असंग मोर कंध कोर असंग चोरा राम खोर असंग कमर कर जाहे जोर असंग अलवड़ हत्या कमाहे असंग पापी पाप कर जाहे असंग कुड़े आर कुड़े फेरा हे असंग कमलेश मल पाख।

कवन सदामन चाओ कवन सवेला भगत कवन कवन तत कवन वार कवन सुरुते मा कवन जतो आकार वेल न पाया पंडित जे हो वेले प्राण भक्त न पायो कर दिया दे लेखन ले कुरान थेतवार न जोगे दान रुतम न कोई द करता सिटे को साजे आप जाने सोई किव कर आखा किव सलाई क्यों वरने क्यों जाना नानके आखन सबको आखा एक दो एक सियाणा

आख वेद पाठ पुराण आख पड़े कर व्याण आख है ब्रह्म आख है इंद आख है गोपी तय गोविंद आख है ईश्वर आख है सिद्ध आख है कित बुद्ध

करे तेरा कार्य सब सुवारणा सबना गला समरा स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा करता तेरा सब कितया जिस दें सो पावे सदा शिव सला तेरे नाम अनवसावे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जन इच्छा सब जाइया सदा कुर्बान किता गुरु बेटो जिदियां ए वडियाइया कह नानक सुनो संत हो शबद्रो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंज शब्द कर सुपागे कर सुपागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत दवास किते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुजन कसे नाम हर कह लागे कह नानक तस को आते ते करिया नह दवाजे साची लवे बंदे नमाणी दे नमाणी लवे बाजो क्या करे बेचारिया तुद बाज समरथ कोय नाई कृपा कर बनवारिया सुना होर थाव नाई सब लाग सवारिया कह नानक लेवे बाजो क्या करे बेचारिया आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जन का मोह चुटा दिन का सब सचे सुवारिया कह नानक हो आनंद है आनंद गुरु ते जानिया बाबा जो सुंदर सोई जन पावे पावे ता सो जन दे जस नूर क्या करह बेचारिया एक परम भूले बरदा दिसक नाम लग सुवारिया गुरु प्रसादी मन पया निर्मल जिना पाणा पावे कहे नानक जस दे प्यारे सोई जन पावे आवो संत प्यारे कद की करे कहानी करह कहानिया कथ करी कित द्वार पाइये तन मन तन सब सौप गुरु को हुकम मनिया पाइये हुकम मनियो गुरु केरा गाव सची बाणी कह नानक सुनो संत हो कथिवा कथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किने न पाया चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मुन जिन भरम बुलाया माया तमोनी तने किते जंटो गोली पाया कुर्बान किता ते सेवटों जन्मों मिठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई किने

साध तेरा चले ना तेस नाल क्यों चित लाइया ऐसा कमूले ना कीचै जित अंत पछताइया सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाल कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया अंत न पाया किन तेरा अपना आप तू जाने जी जन सब खेल तेरा क्या कु आख बखाने आख है ता वेख सब तू है जिन जग त्यो पाया कह नानक तू सदा अगम तेरा अंत न पाया सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा के नि सच्चा मन वसाया जी जन सब तो देव पाए वेक एक वेक परसन आया लभ लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया कह नान जिसनो आप चिटा दिन अमृत गुर ते पाया भगतां के चाल नराले चाल नराले भगतां के रे भिखा मारे चलना लभ लोभ अहंकार ताज तृष्णा बहुत नाही बोलना कन्या तिखे वालों ने किया

सबद स्वावसद सुला सदगुरु सुनाया ए हो तिन के मन वस्या जंतरो लिखे आया कि फिर किनर कर है गला गले किन न पाया कह नान सब सोहेला सतगुरु सुनाया पुए तो से जना जिनी हर त्याया पुए तो गुरु जिनी त्याया पवित्र माता पिता कुटम सह सुपव संग सबाइया कहते पवित्र सुन दे पवित्र सिप जनी मन वसाया कह नानक सिप जन गुरु घर त्याया करमी सहजन उपदेवन सहजे सहसा न जाए न जाए सहसा कित संजम राय कर्म कमाए सत्य जो मृण के संजम तो तदाए मन तो शब्द लागोर सो रहो चित लाए कह नानक गुरु प्रसाद सहज उपजे एहो सह साहेब जाय जियो मैले बारो निर्मल जियो तो मैले तिन जन्म जुए हारिया एह तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया वेदा में नाम तुम सो सुने नाई फिर ज्यो बतालिया कह नानक जिन सच तजा कूड़े लागे तिन जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बाहरो निर्मल बाहरो तो निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करणी कमाणी कोड़ के सोए पहुंचे नाई मनसा सच समाणी जन्म रत जनी खटिया भले से बन जा रे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह गुरु नाले जे को सिख गुरु से ते सन्मुख होवे ता सन्मुख से कोई जियो रह गुरु नाले गुरु के चरण हृदय त्याय अंतर आत्मा संभाले आप शर सदा रह परने गुरु बने बना जाने को कह नानक सुन संत हो सो सिख सन्मुख होए जे को गुरु ते वे मुख होवे अपने सगुरु मुक्त न पावे पावे मुक्त न वर्ता कोई पुछो बाबे किया जाए अनेक जोने परम आवे अपने सगुरु मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरण सतगुरु शब्द सुनाए कहे नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त न पाए आवो सिख सतगुरु के प्यारो गावो सच्ची बाणी बाणी तां गावो गुरु केरी बाणिया सुर बाणी जिनको नजर करम होवे हृदय तन सुमाणी पी बहु अमृत सदा रहो रंग जप्यो सारंग बाणी कहे नानक सदा गावो सच्ची बाणी सतगुरु बिना और कच्ची है बाणी बाणी ते कच्ची सतगुरु बाजो और कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आंख वखाणी हर हर नित करे रचना कया कजो न जाने चेत दिन का हिरलिया माया बोलन पैर वाणी कह नानी सब गुरु बाजो और कच्चे बाणी गुर का शब्द रतन हीरे जित जलाओ शब्द रतन जित मिल लागा यो आसमाओ सब सिद्धि मन मिले

तहि गुणितानुसार परम सुतत ध्यान बिहानी गुरु कृपा ते से जन जागे जन हर अमृत जन हर मन वस्या भूले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसन आंदन लागे जागत रहन बिहानी माता के उदर में प्रतिपाल करे सुख मन विसारी है मनो क्यों विसारी है वरदाता जी अग्न मह आहार पहुँचावे उसनो कह पो न सके जिसनो अपने लिवलावे अपने लवा पहला है गुरु सदा संभालिए कह नानक वरदाता सो क्यों

पवन बजाया यो साचा सोहला सच कर गाव गाव ता सोहला कर सच है जिथे सदा सच त्याव है सचो त्याव है जा तुद पाव है गुरमुख जना बुझावे यो सच सबना का खसम है जिस बख्श

लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए सुख हो टल गुरु सेविया अहनस सहज सुभाए दर्शन परस्यां गुरु के जन्म मरण दुख जाए हो वै सुबत का समदे नुरियर्षों को

गुरपुर कृपा तारे प्रभ पूरे लोच हमारे कार इस नान ग्रह आए आनंद मंगल सुख पाए।

जन सोय जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविया गुणी निदान गाविया सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर।

0: प्रभु सिमर सदा बनासी
1: सिमरन ते लागे जिने आप दयाला
0: नानक जानकी मंगेर वाला
1: प्रभु को सिमर से पर उपकारी
0: प्रभु को सिमर तिन सद बलिहारी
1: प्रभु को सिमर से मुख सुहावे
0: प्रभु को सिमर तिन

0: प्रभु के सिमरन सहज समानी
1: प्रभु के सिमरन निश्चल आसन
0: प्रभु के सिमरन कमल भगासन
1: प्रभु के सिमरन अनहद के अनुकार
0: सुख प्रभु सिमरन का

0: जन माए उधारी
1: अनक पुने चरण करत नहीं तरे
0: हर को नाम कोट पाप पर हरे
1: गुरमुख नाम जपो मन मेरे
0: नानक पावो सुख घनेरे
1: सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया
0: हर का नाम जपत होए सुखिया
1: लाख करोड़ी बंदना परे
0: हर का नाम जपत ने सरे
1: अनक माया रंग तिख ना बुझावे
0: हर का नाम जप गावे
1: जय मार गे हो जाते अकेला
0: तै हर नाम संग होत सहेला
1: ऐसा नाम मन सदा त्याइए
0: नान गुरमुख परम गत पाइए
1: छूटत नहीं कोट लख बाही
0: नाम जपत पार पराही
1: अनक बिगन जय आए संगार
0: हर का नाम सतकाल उधारे
1: अनक जोन जन में मर जाम
0: नाम जपत पार

0: काची पीत
1: मन हर के नाम की महिमा ऊंच
0: नानक नाम उतरे पतित बहु मोच
1: बहुत सियाणप जम का पौ व्यापै
0: अनेक जतन का

0: पनात पनीत पनंत संग हसे।
1: जय प्रसाद पीवे शीतल जला,
0: सुखदाई पवन पावक मुल्ला।
1: जय प्रसाद भोगे सब रसा,
0: सगल समग्री संग साथ बसा।
1: दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना,
0: किसे त्याग अवर संग रचना।

0: जैसे त्यागत वल्लभावे
1: जय प्रसाद सुख से सोई जय
0: मन आठ पैर का जस गाविए
1: जय प्रसाद तो सबको मन
0: मुखता को जस रसन खाने
1: जय प्रसाद तेरो रहता धर्म
0: मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म
1: प्रभु जी जपत दर गए मान पावे
0: नानक पासे ती

0: प्रसाद अस्वहस्त सवारी
1: मंत्र ब्रह्म को कहूँ नाम सारी
0: जय प्रसाद बाग मिलक तना
1: राग प्रोई प्रभु अपने मना
0: जिन तेरी मन बनत बनाई
1: उठत बैठ सत

0: श्रेष्ठ प्रभु को सास सास चतारी
1: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप
0: हो प्रभु सिमरो सदानूप
1: जय प्रसाद तेरी नीकी जात
0: हो प्रभु सिमर सदा दिन रात
1: जय प्रसाद तेरी पात रहे
0: गुर प्रसाद नानक जस कह
1: जय प्रसाद सुने करनाद
0: जय प्रसाद पेखे बसमाद
1: जय प्रसाद बोले अमृत रसना
0: जय प्रसाद सुख सहजे वसना
1: जय प्रसाद हस्त कर चले
0: जय प्रसाद सुपूर्ण फले
1: जय प्रसाद परम गत पावे
0: जय प्रसाद सुख सहज समावे
1: ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो
0: गुर प्रसाद नानक मन जागो
1: जय प्रसाद तू प्रगट संसार
0: तिस प्रभ को

0: साध संबल सगली खोत
1: साध के संग मिटे अभिमान
0: साध के संग पटे सो ज्ञान
1: साध के संग बुझे प्रभ नेरा
0: साध संग सब हो तन वेरा
1: साध के संग पाए नाम रतन
0: साध के संग को पर जतन।

0: सार संग साधन मीठ कटमने सारे
1: साधु के संग सोतन पावे
0: जिस संग ते सब को बरसावे
1: साध संग धर्म राय करे सेवा
0: सार के संग सो पासुर देवा
1: साधु के संग पाप पलायन
0: सार संग अमृत गुण गायन
1: साध के संग सर्व थान गम
0: नानक साध के संग सफल जन्म
1: साध के संग नहीं कछ काल
0: दर्शन पेटत उतने हाल
1: साध के संग कलूकत हरे
0: साध के संग नरक पर हरे
1: साध के संग इहां उहां सुहिला
0: साध संग बिछरत हर मिला
1: जो इच्छे सोई फल पावे
0: साध के संग न बिरथा जावे
1: भार ब्रह्म साधरित बसे
0: ज्ञान खोदरे साध सुन रसे
1: साध के संग सुनो हर नाओ
0: साध संग हर के गुण गाओ
1: साध के संग नामक

0: मन अपने है सब ते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन पे
0: नानक जिन प्रभ आप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

0: कई कोट राजे रस भोगे,
1: कई कोट पंखी सर्प उपाए,
0: कई कोट पाथर बिरघ निप जाए,
1: कई कोट पवन पानी बह संतर,
0: कई कोट देश भू मंडल,
1: कई कोट सस्यर सूर नखतर,
0: कई कोट देव दानी इंद्र सिर छतर,
1: सगल समग्री अपने सूत तार,
0: नानक जिस जिस पावे तिस तिस सारे,
1: कई कोट राजस्थान सातक,
0: कई कोट वेद प्राण सिमरत

0: ज्ञान सब कुछ प्रभु के हाथे
1: कई कोट पाए बैरागी
0: राम नाम संग तिन लिव लागे
1: कई कोट प्रभु को खोजनते
0: आत्म में पार ब्रह्म लहंते
1: कई कोट दर्शन प्रभु प्यास
0: तिनखियो मिलियो प्रभु अवनाश
1: कई कोट मांगे सतसंग
0: पार ब्रह्म तिन लागा रंग
1: जिनको हुए आप सो प्रसन्न
0: नानक तेजन सदा तन तन
1: कई